0: This is a public service announcement.
1: The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1.
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: Attention!
9: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
10: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
11: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
10: सलासा ट्यूशन सेंटर?
11: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है.
10: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
11: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
10: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ.
12: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए. सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
13: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing.
13: Faza 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट।
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक।
6: फजान 97.1 FM,
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड ऐप।
8: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
9: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
9: You are listening 97.1 FM.
10: Are you ready?

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07-59-150-669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: सवाल।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
3: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
2: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
3: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
2: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
5: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
6: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
5: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
6: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
5: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
6: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
5: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
6: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
5: टेस्ट भी वाइब भी।
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: इट्स कमर्शियल टाइम.
4: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
5: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
7: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
9: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
8: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
9: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
8: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
9: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
8: Park Foods, जो नाम है मायार का.
11: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
12: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
11: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
12: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
11: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
13: You are listening 97.1 FM.

0: नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.

वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, स्वामी निजी वकार एंड लिसनर्स ऑफ रेडियो 97.1 एफएम, हियर इज योर होस्ट नासिर खान, लेकर आया हूं आपके लिए गुड मॉर्निंग जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम। तो समझाएं सुन लें बताएं कैसे आप सब लोग के अहवाल, मा कांग दांगो मा गांदे वर्तन हम सुगम सुगम अणु केम छे बोन जो, और की हाल चाल है मेरा तेतवाड़ा में, फिट फाट बेहतरीन, और उम्मीद वासिक है कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। बड़े अरसे के बाद मुलाकात तो नहीं हुई, खैर जिन्होंने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, और आपको बताता चलूं कि जिन्होंने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया और जो भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं आपसे गुजारिश है कि आ जाइए 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो में, आपका मेजबान आसिफ खाना मौजूद है। जनाब गाड़ी निकल पड़ी है नॉटिंघम शायर से और बिल्कुल जनाब सिटी सेंटर से होती हुई मुख्तलिफ मकाम से, जहाँ जहाँ हमें ट्यून करेगा वहाँ वहाँ ब्रेक लगाएंगे। स्टारबक्स या कोस्टा के सामने अगर हल्की सी कॉफ़ी हमें हमारे पास मिल जाए ना तो जनाब दो कॉफी लीजिएगा, लेकिन अगर ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन लेकिन लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ट्यूनअप भी रहें और साथ हमें सुनते भी रहें तो फिर आपसे गुजारिश है कि जो मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के उनको भी शामिल किया जाएगा। बिल्कुल जना, मैं आपको बताता हूँ, वो 1157100971 की वो नंबर है जिस नंबर पे आप रब्ता करते हैं। डेफिनेटली हमने थोड़ा सा स्केड्यूल को अपने तरह अपडेट करना है और स्केड्यूल को अपडेट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट करें, यानी इस लेवल पे मोटिवेट करें कि आज के दिन, यानी आज कह लें कि आप कुछ ऐसा ज़बरदस्त करना चाहते हैं जैसे कि कुछ यूनिक सा हो, कि अगर कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं जो बज़ाहिर आपको कुछ नुकसान दे रहे हैं तो यकीन कीजिए अगर थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट लेके हम चलें कि अगर उन्हीं का ऐसा प्रस्ताव या ऐसा उनका रवैया जो आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दे, या उन लोगों को जिनसे आप नाराज़ हो चुके हैं, जिनसे आप कोशिश नहीं कर रहे, मतलब मिलना नहीं चाहते, मिलना चाहते भी हैं तो आपको कोई सीधे तरीके से वो मुँह नहीं लगाते, लेकिन अगर आप लोगों को अपने लिए और अपने प्यारों के लिए या उन लोगों के लिए जो लोग इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में मुख्तलिफ मामलात में फंसे हुए हैं, तो आपसे एक गुजारिश है, आप अगर उनको तहे दिल से चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो आपसे रब्ता भी ना करें तो बिल्कुल भी जनाब आज के दिन आपने ऐसा करना है कि आज आप उनको थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें, ना चाहते हुए भी कोशिश करें कि उनको अपने साथ मिलाएं आप, उनके मिलाने के बाद उनके साथ उनका प्लान डिस्कस करें। मुझे मालूम है ये होता है, प्रॉब्लम है कि इंसान ना चाहते हुए भी दूसरे को बुलाना नहीं चाहेगा जिसको वो नहीं बुलाना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बंदों को बुलाना चाहिए और उन चीज़ों को भुलाना चाहिए। अगर आप उन चीज़ों को भुलाने वाली ताकत रखते हैं तो फिर आप एक ऐसे पुरुष हैं इस जनाब ज़बरदस्ती दुनिया में, इस जीवन काल में आप एक यूनिक सी पर्सनैलिटी हैं, जो पर्सनैलिटी जनाब हमेशा उन लोगों के लिए ख़ास रहती है जो लोग कोशिशें करते हैं कि हमने अच्छे और प्यारे तरीके से एक दूसरे को साथ लेके चलना है, अपने पड़ोसी को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को, उसके बाद अपने जितने भी को वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, या अगर आप किसी जगह पे एम्प्लॉयर हैं तो फिर तो आपसे गुजारिश है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे गुजारिश है कि आज के दिन अपने एम्प्लॉयर के लिए जनाब दिलो जान से काम कर दें, कुर्बान कर दें, और कोई ऐसे टास्क कि ये जो टास्क बड़े अरसे से पेंडिंग हो जो ना हो पा रहे हैं। अगर आप सेल्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से, या मैनेजमेंट से, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, बिजनेस मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से, कोऑर्डिनेशन से, किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो जनाब फिर ये मौका है आपके लिए। जनाब ये तो वो बातें हैं जो अक्सर मैं आपके साथ करता रहता हूँ मोटिवेशन के हवाले से बूस्ट अप देने के, लेकिन आज सबसे पहले मैं क्या शामिल करूंगा कि आज जनाब सबसे पहले मैं शामिल करूंगा अपने प्रोग्राम में कोट ऑफ द डे। बिल्कुल जनाब कोट ऑफ द डे शामिल होगी, और कोट ऑफ द डे में कौन होंगे मेरे साथ, कोट ऑफ डे में जनाब एक ज़बरदस्त सी कोट मेरे पास मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो जनाब बड़ी सिंपल सी, बड़ी छोटी सी कोट है जिसको हम लेके चलेंगे और वो कोट मेरे साथ रहेगी, आप इसी पे अपनी विशेष टिप्पणी, अपनी राय, अपने विचार देंगे और आप अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कहते हैं कोई सियाना बंदा कहता है, वो ये कहता है कि अंधेरों में भी चमको तभी सितारे कहलाओगे। लेकिन जनाब अब इसको तशरीह की तरफ लेके जाएंगे, जनाब अंधेरों में चमकने वाले लोग कौन से होते हैं जो सितारे कहलाते हैं? बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने स्टार्ट में बात की, जब प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया, और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद
मैंने सबसे पहले ये बात की कि आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन काल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली तो आप उनको देखना नहीं चाहते, उन्होंने कोई आपको लॉस दिया होता है, कोई आपको नुकसान दिया होता है, या उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, या उनकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा लॉस हुआ होता है। लेकिन अगर आप उन लोगों को, जैसे कि शुरू बात की कि उन लोगों को अपने सीने से लगाएं और उनकी मतलब कोशिश करें कि उनकी जो खता थी उनको मुआफ़ कर दें, अगर वो हमारे नॉटिंघम में, इंग्लैंड में, यूके में कहीं भी मौजूद हैं, आपके जो हमारा होमलैंड है मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से मतलब वो बिलोंग कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आपके पास इस प्रदेश में भी हैं या इस देश के प्रदेश में भी हैं, या आपके पास ILR है और वो बेचारे भी वर्क परमिट पे, उन्होंने टैक्सेस, PHMRC, होम ऑफिस कंप्लाइंस, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें मिलजुल जाती हैं तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो अक्सर लोग ना यहाँ पे हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोट की है वो ये है कि हम ना थोड़ी सी कुदरत रखने वाले लोग हैं। हमारे नॉटिंघम शहर के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन अगर कहीं आप मतलब बाहर जाएं या लंदन की तरफ, बड़े इलाके हैं, बर्मिंघम चले जाएं, तो वहाँ पे लोगों के मसाइल भी डिफरेंट से हैं। यार मैं इस बंदे नू नहीं बुलाना, इसने फलां वक्त ही ना मेरे नाल, मैं इंडिया में था, पंजाब से है ना, तो पाजी सीरियसली बड़े गुस्से में चले गए, उन्हें ना पटियाले ने ऐ किया मेरे नाल, वो जनाब अगर पाकिस्तान से हैं तो जनाब इसने एबटाबाद में मेरे साथ ये किया, मैं बिल्कुल इसको नहीं मिलाऊंगा। लेकिन खुदा रहा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस देश के प्रदेश में और इस प्रदेश के देश में अगर आप उसको अपने गले से लगा सकते हैं, सो दिस इज द बेस्ट थिंक वट एवर, मतलब वट यू कैन डू इन योर लाइफ। अपने जीवन काल में सबसे अच्छी चीज़ वो कि जिसको आप बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहते, बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, और उसको आप गले से लगा लें एक बार और सोचें उसके लिए कि यार मैंने कुछ काविश करनी है, तो आज इसकी जो पुरानी खताएं हैं उसको भुला देते हैं। एक बड़ी हंसी वाली बात है, बड़ी चंबे वाली बात है कि बेसिकली उसको ये कहते हैं कि यहाँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि यहाँ पर तो पढ़ते, लेकिन जब तुम पाकिस्तान जाओगे वहाँ पर जो तुमने मेरे साथ किया था मैं उसी जगह पर तुमसे बदला लूँगा। तो ना ये एक बड़ी ज़बरदस्ती खेल और खेंचा तानी बन जाएगी, प्रैक्टिकल लाइफ पर उसकी ठीक हो जाएगी, आप उसकी हेल्प भी कर देंगे और उसके साथ साथ जो लोग थोड़ी सी ना हल्की सी भी ये देखते हैं कि हमारे पास वक्ती तौर पे मतलब MI पे गाड़ी भी है, मॉर्गेज भी है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सेटल्ड, सिर्फ आपने मंथली कुछ ना कुछ अपना शेयर पे करना है, तो फिर उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास यहाँ इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में स्पेशली जो लोग दुबई से, मुझे मोहसिन और आतिका अफजल आई थिंक लिसनिंग फ्रॉम दुबई, थैंक यू वेरी मच, आपने स्पेशल मैसेज किया। जो हमारे नॉटिंघम शहर के टेम्परेचर कह रहे हैं, जो हमारे नॉटिंघम शहर के जो हमारे लिसनर्स हैं, टेम्परेचर के इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अभी आगे मैंने आपको बताना है मौसम का ताज़ा तरीन सूरत हाल और टेम्परेचर तो होगा, इस हवाले से थोड़ी सी जुबान लड़खड़ा गई और टॉपिक मिक्स से हो गए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से ओपन है सामने और उन सारी चीज़ों को ले के साथ साथ चलना है। तो जनाब आपको लोगों को ये बताते चलें कि यहाँ की जो मसाइल हैं वो मसाइल भी हैं, लेकिन सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो हमारी कम्युनिटी है। जिस साउथ एशियन कम्युनिटी हम पलते हैं, बढ़ते हैं, खूबसूरत तरीके से लोगों को मिलते हैं, ये बहुत कमाल की चीज़ है। और अगर आपको कभी चांस मिले यहाँ आने का, देन यू विल सी, आप इंजॉय करेंगे कि कौन कौन से कितने प्यारे से लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं।

जी जनाब, तो लिसनर्स वेलकम बैक। हल्का सा बीजीएम आपको सुनाए इस वजह से कि मुझे भी पता चल सके कि मेरे माइक ठीक चल रहे हैं, यानी तो अब जाके ना सेटिंग कुछ बेहतर हो चुकी है। तो जनाब वेलकम बैक। और ये थी जनाब, तो ऐसे लोगों से अगर आप मिलेंगे और आप उनको दोबारा अपनाएंगे जिन्होंने आपसे आपके पूरे जीवन काल में किसी मतलब माजी में कुछ ऐसा किया है जो आपके लिए, जिसे आप नाराज हो गए थे, जिसे आप बर्दाश्त हो गए थे, जिससे आपको दुख हुआ था, तो बेसिकली फिर उन लोगों को अपने सीने से लगा लीजिए इस देश के परदेश में, अगर ऐसा कोई बंदा आपके जानने वालों में है। नहीं है तो मुझे बताएं, मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं, मैं आपको दूंगा। एनीवे, तो जनाब ये हमारी गपशप है, ये तो साथ साथ चलती रहेगी, तंज़ो मज़ा भी रहेगा, आप लोगों के पैगाम भी आएंगे, उनको भी प्ले करेंगे 0115 7100971।

तो जनाब इसलिए मैं कहता हूं कि जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट जो आज की कोट है वो है, अंधेरों में भी चमकोगे तभी सितारे कहलाओगे।

अब अगर आप अंधेरों में चमकना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को गले से लगाइए, और यही है आज की हमारी मोटिवेशन। तो नहीं जनाब, जिन लोगों ने अभी मुझे ट्यून किया उनको मैं ये बताता चलूं कि जनाब, जैसा कि आपको बताया कि हमारे जितने भी नॉटिंघम शहर के लोग हैं बड़े जिंदा दिल हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े कमाल के लोग हैं ये। इस जिंदा दिल की मिसाल ये है कि जनाब, हम डिफरेंट इवेंट करते हैं, और इवेंट के हवाले से आज जो इम्पोर्टेंट सा इवेंट है जिसको मैं दो तीन मिनट में अनाउंस करूँगा जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर वन डे 14th of August जनाब, हमारे नॉटिंघम शहर में पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम लेकर आ रहा है 79th इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस डे के मौका पर जनाब द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सनम मारवी जनाब आ रही हैं हमारे पास। पाकिस्तान की बहुत मायनाज सूफी सिंगर हैं, अक्सर उनके ट्रैक्स भी आप लोगों ने सुने, कोक स्टूडियो में बड़ी चाई हुई। जितने भी पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हैं उनके साथ उन्होंने बड़ी कमाल की कोलेब्रेशन भी की हुई है। सईद जहूर हो गए, उसके बाद नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, रूफी साहब, और उसके साथ जनाब हमारे यूके के बड़ी फेमस दो टैलेंटेड यानी हसीब हेज एंड मुकी, ये भी जनाब अवेलेबल होंगे, और पाकिस्तान फॉरम नॉटिंघम की जानिब से ये जनाब है, और जिसमें रेडियो

स्पॉन्सर्स भी कर रहे हैं और भी काफी सारे स्पॉन्सर्स हैं। एक्सेलसियर नवाब में जनाब ये मुनक्द होने जा रहा है 5-7 लोटस रोड नॉटिंघम। तो जनाब आपको बताते चलें कि 14 अगस्त फ्राइडे आना मत भूलिएगा, 6 PM गेट विल बी ओपन। और आपको ये भी बता दें कि एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप टिकट बुक कर लें फिर भी बेस्ट है। और टिकट बुक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा excelsiornawab.co.uk की वेबसाइट पे, लेकिन एंट्री फ्री है। आपको ये बता दें पहले आई थिंक देयर वाज सम चार्जेस, लेकिन अब चूंकि सीट फिल हो चुकी हैं और या डेफिनेटली इसलिए कि क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे है, और इसलिए ना पाकिस्तान फोरम ने फ्री एंट्री का अनाउंस किया है रिसेंटली, सिर्फ 1 or 2 days है, तो आना मत भूलिएगा। और मज़ीद मालूमात के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं 07802988615 पर या फिर 07152999 पर। तो इन देर मत कीजिए, शामिल हो जाइए पाकिस्तान के 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में। और जनाब ये ढेर सारे जो स्पॉन्सर्स हैं ये भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो देंगे, स्टॉल्स होंगे, हल्ला गुल्ला होगा, फन होगा और बहुत ही मस्ती मजाक और सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे। सो स्टे ट्यून विद फदर 97.1 FM, एंजॉय कीजिए ये ज़बरदस्त सा इवेंट भी। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ मौसम की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल मौसम की सूरत हाल जनाब आपको बताते चलें, माई गुडनेस मैं कहूँ आज इतनी गर्मी क्यों है जनाब। सिचुएशन ये है कि 32 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 17 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड किया गया आज का दर्जा हरारत। और इस वक्त जो सिचुएशन है कि जनाब 8 बजे तक रात को सनशाइन, 29% हीटअप रहेगी, 0% फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल है जनाब। और आपको ये बताते चलें 36 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं, माय गुडनेस। और जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो ठीक हुई, आपको बताया था कि इस वीक में ये जा रहा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्मी एकदम से आई है, हम लोग इस चीज़ के आदि नहीं हैं बेसिकली। लेकिन आपको आज रात के हवाले से बता दूं कि टुनाइट इज सेट टू रिमेन ड्राई एंड क्लियर विद लिटिल टू नो क्लाउड कवर थ्रू आउट द नाइट, ओवर ऑल मिड कोल्ड नाइट विल बी अहेड। ये जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी, लेकिन अब आई थिंक हम वी आर गोना मूव टूवर्ड्स एयर कंडीशन, फैंस और इन चीज़ों पे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन आपको ये बताते चले कि जितनी इस बार गर्मी पड़ी है हमारे यूके में, नॉटिंघम में, और यहाँ का मौसम कब कैसे कहाँ क्यों किस लिए बदल जाता है नोबडी नोज़, तो नोबडी नोज़ के वाकया ही हमारे पास से क्या सिचुएशन है। लेकिन ऊपर वाला रहम करे, देखें अपने और अपने पैरों का ख्याल रखें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, बिल्कुल जिसको आइस या बर्फ़ कहते हैं ना वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इतना कोल्ड पानी या इतना मिंट वाटर या जिसको आप शिकंजीन कहते हैं बेसिकली लेमन पानी, लीमू पानी, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल मिनरल्स हैं उनको यूज़ करें, ग्रीन जितनी चीज़ें हैं, क्यूकम्बर, कैप्सिकम, उसके बाद कैबेज, उसके बाद और भी जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन सैलड के तौर पर उनको मस्ट यूज़ करें। ओनियन प्याज का इस्तेमाल मस्ट कीजिए सैलड के हवाले से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद अगर दिल करे इवनिंग में कुछ चाय की ब्रेक करने का, या हाई टी का, या स्मॉल टी का, या मीडियम टी का, तो बेहतर है कि आप कहवे की तरफ यानी ग्रीन टी की तरफ जाएं, दिस इज़ मच बेटर। तो जनाब थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे साथ रहे 01157100971। ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता करेंगे और आप एहसास सिलाएंगे अपने होने का। अलावा से आपको ये बताता चलूं कि जनाब आप हमें 97.1 FM के अलावा डैप पे फजा के नाम से सर्च कर सकते हैं और आप ट्यून कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूं कि जनाब ऐप आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल, कहाँ पे, बिल्कुल ना सर्च बार में, और वहाँ पे ना फिर आपके पास एक गोल्डन कलर में लिखा हुआ फजा जिसके पीछे बैकग्राउंड होगा पर्पल कलर का, उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज़ ठहरेगी आपकी समाज होगी नज़र, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए।

वन ऑफ माई फेवरेट मैशअप आप इंजॉय करेंगे. हार्डली हमारे पास थोड़े से 5 से 7 मिनट हैं. इसके बाद सेगमेंट थोड़ा सा चेंज होगा या आपके लिए कुछ ट्रैक्स भी लाए जाएंगे. मैं रहूंगा आपके साथ ना ठीक 10 बजे तक. गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपका मेजबान नासिर खान. मजीद 5 मिनट के लिए आप ये ट्रैक सुनेंगे. इसके बाद इन ट्रैक्स के दरमियान ही हाइल होगी खूबसूरत से प्यारे से प्यारे से खूबसूरत से लोगों के लिए, हमारे नॉटिंघम शहर के लोगों के लिए. कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक को सुनिएगा. ठीक कमर्शियल ब्रेक के उस पर फिर रहेगी आपसे मुलाकात. स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM. वेरी गुड मॉर्निंग, स्टे ब्लेस्ड. योर होस्ट विल बी राइट बैक.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए जनाब वेलकम और ये स्वागतम स्वागतम स्वागतम उन समाजों के लिए है जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे या फिर डैब पे या फिर हमारी ऐप पे। अरे ऐप के हवाले से याद आया कि आपको बताते चले कि ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे जनाब। आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले पे प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 7.1 FM official और एक फिर जनाब पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन या पीच कलर में या येलो कलर में लिखा हुआ फजा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नजर आपको कहती हुई गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। तो जनाब कैसी लगी द ग्रेट महात्मा गांधी की जनाब इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी है। उम्मीद है कि सुबह का जो टाइम है इस वक्त तक आप ड्राइव करते हुए अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवान दवा हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपने चलते हुए या ड्राइव करते हुए किसी को सुनना है, किसी को पहचानना है, किसी को बताना है या किसी को अपनाना है। तो जनाब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इम्पोर्टेंट सी कुछ चीज़ें नोट कर लेनी है। आपने सबसे पहले 97.1 FM को ट्यून करना है। स्टारबक्स कोस्टा से डबल एस्प्रेसो या कैपेचिनो के साथ एक ज़बरदस्त मग आपने लेना है। अगर एक मेरे लिए भी ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी ले लीजिए अच्छे से पेडिस्ट्रोल में पार्किंग करके और उसके बाद आराम से टांग के ऊपर टांग रख के सुकून से ये प्रोग्राम सुनिएगा। लेकिन अगर आप लेट हो रहे हैं कहाँ से, अपने ऑफिस से या अपने काम से या किसी भी आप अपने स्टेशन पे जाना चाहते हैं तो फिर आपसे गुजारिश है कि अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवान दवा रहिए। लेकिन नंबर नोट कर लीजिए 01157100971 व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करेंगे और मैसेज के साथ आप मुझे बता देंगे कि आपके क्या विचार हैं इस सेगमेंट के हवाले से। तो जनाब सारी जिंदगी एक जबरदस्त एवरेज स्टूडेंट ने एक इंस्पायरेशनल लीडरशिप कैसे अपनाई और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान के पास वक्त की किल्लत हमेशा रहती है, थोड़ा सा

काफ़ी सारी परेशानियाँ हमें यहाँ पे होती हैं नॉटिंघम शहर वालों को या यूके वालों को, इंग्लैंड को, या जो भी यहाँ पे सेटल होने के लिए आए, अपने अपने होम टाउन को छोड़ के आए, यूरोप में हो, यूएसए में हो, कहीं भी, तो परदेश ही होता है। लेकिन अच्छी कम्युनिटी का मिलना और सिविलाइज्ड कम्युनिटी का मिलना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, और आई थिंक वी आर द वन ऑफ देम। तो जनाब, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सा सफर आप लोग मेरे साथ हैं। कोट ऑफ द डे एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता चलूँ, कोट ऑफ द डे क्या है? कोट ऑफ द डे है जनाब के मुसीबत में जो लोग अंधेरों में या मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं, यानी अंधेरों में चमकोगे तभी सितारे कहलाओगे, यानी मुसीबत में एक दूसरे के काम आने का मेन मकसद यही है कि आप फिर ही स्टार्स कहलाने के काबिल हो सकते हैं। और जब स्टार्स कोई कहलाना शुरू करता है या कोई बताना शुरू करता है कि भाई तुम तो सितारे हो, ये वो सितारे नहीं जो टीवी के स्टार्स होते हैं, फिल्म एक्टर्स होते हैं, ये रियल लाइफ के स्टार्स होते हैं जो आपके काम आते हैं, आपको मोटिवेट रखते हैं, आपको ज़िंदगी में साथ लेके चलते हैं, आपकी ज़िंदगी की जितनी परेशानियाँ हैं वो सुबह सवेरे अगर आप ना चाहते हुए भी उनको अपने अंदर उंडेल लें या उनको अपने अंदर कुछ ख़ास जगह दे दें उन परेशानियों को, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, चैलेंजेस आते रहेंगे। जैसा कि अक्सर जानते हैं कि लॉटिन मार्थर बहुत ज़बरदस्त कैनेडियन एक ज़बरदस्त किस्म के ऑथर हैं, वो अक्सर एक बात करते हैं कि ज़िंदगी में तीन किस्म के लोग होते हैं, वन इज़ वॉरियर, चैलेंजर एंड सर्वाइवर। अक्सर पूछा जाए ना लोगों से कि जनाब इन तीनों जो लाइफ में ये लोग हैं, चैलेंजर, वॉरियर और सर्वाइवर, इनमें से सबसे कामयाब या जीतने वाला कौन है? तो लोग चैलेंजर को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि मोस्टली 98% बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केटिंग की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनमें अगर ये चीज़ देखी जाए तो लोग इस चीज़ पे हाथ खड़ेंगे, जो चैलेंजर्स हैं वो बेस्ट हैं। लेकिन मार्थर ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब सबसे जो बेस्ट हैं वो हैं जो वॉरियर हैं, जो जंग करते हैं, क्योंकि जो वॉरियर होता है ना वो हमेशा गाजी रहता है। उसने जनाब एक जंग जीतनी है फिर आगे चलना है, जंग जीतनी है और फिर आगे चलना है। जो चैलेंजर्स होते हैं वो बेचारे तो सारे जिंदगी चैलेंज एक्सेप्ट कर करके ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जो भी चैलेंज आपको मिले उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको फिर जंग के तरीके से हल करना सीखिए, ताकि दोबारा कोई उस तरह का चैलेंज आपके सामने आए ही ना। और जब ऐसा कोई चैलेंज नहीं आएगा तो फिर आप एक कामयाब वॉरियर कहलाएंगे। और उसके बाद कुछ होते हैं सर्वाइवर, जो जिंदगी की बाग दौड़ में बड़े आराम से धीमे मिजाज से चलते रहते हैं। उनके कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उनके खास गोल्स होते हैं, कुछ उनके खास मकासद होते हैं, जिन मकासद को वो पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। एवरेज लोग होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जैसा कि हमारे महात्मा गांधी थे। लेकिन इंस्पिरेशनल स्टोरी क्या है कि एक ग्रेट लीडर कैसे बने? डेफिनेटली कंपेनियनशिप मिलती है मोहम्मद अली जना, लियाकत अली, ये उस दौर के जो कंपेनियन थे, सारे ही जीनियस थे, तो इन जीनियस में से अकेला निकट तो कोई रह नहीं सकता। इसलिए कुदरत ने ना सब जीनियस को एक टाइम में, एक हम असर, एक दौर में भेजा, और उस दौर में महात्मा गांधी भी थे। तो जनाब डेफिनेटली कल या परसों बरायदा पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिपेंडेंस डे है, एक बार फिर से मैं अनाउंस करता चलूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ही एक इवेंट हमारे पास होने जा रहा है। कहाँ पर जनाब इवेंट ये होने जा रहा है आपको बताते चलें कि एक्सेलसियर नवाब में पाकिस्तान फोरम नॉटिंघम लेकर आ रहा है खूबसूरत इवेंट, जहाँ पे परफॉर्म करेंगी सनम मारवी। सनम मारवी जनाब द ग्रेट सूफी सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान, रेडियो फजा और जेट के इवेंट्स हैं जनाब, मीडिया पार्टनर एक्सेलसियर नवाब, 5-7 लोटस रोड नॉटिंघम। और इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि जनाब हमारे यूके के फेवरेट जो यंगस्टर सिंगर्स हैं हसीब हेज एंड मुकी भी होंगे स्पॉन्सर्स में जनाब अवेलेबल हैं, जो हमारे साथ मीडिया पार्टनर हैं जनाब। मीडिया पार्टनर्स में तो रेडियो फजा और जेट के इवेंट्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं मुस्लिम हैंड्स हैं, यूनिक फाइनेंशियल सर्विस, जो पार्ट्स, सी टी पी, नॉटिंघम ट्रेवल, रॉयल मैराज और एक्सेट्रा, काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा हैं। आपको ये बताते चलें कि 14 अगस्त 2026 फ्राइडे इवनिंग 6 PM गेट ओपन हो जाएंगे, फ्री एंट्री है जनाब, लेकिन अपने टिकट फिर भी रजिस्टर करवा लीजिए। विजिट कीजिए excelsiornawab.co.uk। मजीद मालूमात के लिए आप विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, द नंबर इज 07802988615 एंड 07152999। तो जनाब मिलके मनाइए पाकिस्तान का 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन विद सनम मारवी, हसी भेज एंड मुकी, ओनली ऑन रेडियो फॉर द 97.1 FM। बेबी आप लाइव सुनेंगे इस प्रोग्राम को, लेकिन अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं तो जनाब एड्रेस मैंने आपको फिर से बताया देता हूं एक बार, वैसे तो बता दिया है जनाब, एड्रेस है excelsiornawab.co.uk और 5-7 लोटस रोड NG51EL। तो ये थी जनाब खूबसूरत सी गपशप हमारी, और आप भी हमारे साथ रहे। कुछ ट्रैक्स मेरे पास मौजूद

करते हैं, वो ट्रैक्स आपकी खिदमत पे रहेंगे। इसके बाद होगी खूबसूरत सी कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक एंजॉय कीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद फदा 97.1 एफएम एंड डैब एंड योर होस्ट आसिर खान विल बी राइट बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ
3: हो
2: यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

लिसनर्स की तो बात होगी उस एनर्जी के डोज की, तो आपके आपको मोटिवेट करता है दिन भर घर से बाहर निकलने के लिए, काम काज करने के लिए और अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब हम ज़रा बात कर लेते हैं उस एनर्जी के डोज की जो आपके माइंड को रिफ्रेश करता है, रिचार्ज करता है और आपको एक एक्टिव फराहम करता है। एनी गेसेस हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? अगर हम इसमें देखें तो बहुत सारी एक्सपेंसिव और महंगी थेरेपी सामने आती हैं, लेकिन हमें एक्सपेंसिव और महंगी थेरेपीज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। उसके लिए हम सुनेंगे म्यूजिक। लिसनर्स आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, सुनते हैं ये ट्रैक।

0: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपकी पसंदीदा होस्ट एंड दोस्त ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं टीवी डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये म्यूजिकल सेगमेंट? क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों पर काफ़ी हद तक सुस्ती और काहली छाई हुई है, सो इस सुस्ती और काहली को ख़त्म करने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको सुनाए जाएं ऐसे गाने, ऐसी ट्यून्स जो आपके मूड को कर दें इंस्टेंटली बूस्ट अप और थोड़ा थोड़ा चेंज। वेल लिसनर्स, ये वो सभी गाने थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, सो मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको ये ट्रैक सुनाए। अगर आप चाहते हैं कि हम शो में कोई ऐसा ट्रैक शामिल करें जो कि आपको पसंद हो, आपके दिल के हो करीब, सो सिंपली आप हमें बता सकते हैं 01157100971 इस नंबर के थ्रू, क्योंकि ये है मेरा और आपका रबते का नंबर। सो इस तरह से हमारा रबता बरकरार रहेगा और शो में तमाम तर वही चीज़ें शामिल की जाएंगी जो कि हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं। वेल लिसनर्स, जैसा कि है आज वेनसडे और वेनसडे के हवाले से हमेशा से कहा जाता है कि मंडे को इंसान की एनर्जी बहुत ही एक पीक लेवल पर होती है, कि एनर्जी बहुत हाई है, इंसान बहुत फास्ट चल रहा है, और या तो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है या फिर इंसान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है स्वस्थ। लेकिन यही एनर्जी ट्यूजडे को आकर थोड़ी सी कम और वेनसडे को आकर बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। सो आई होप सो कि आज आप सबकी भी एनर्जी होगी काफ़ी हद तक बैलेंस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा बदला जाए, चेंज किया जाए। सो द लिसनर्स, अभी तक अगर आप घरों से बाहर निकल चुके हैं या फिर अपने ऑफिसेस की तरफ रवा दवा हैं, ड्राइव कर रहे हैं या पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो मैं आप सभी को बताते चलती हूँ कि किस तरह से आपका ये सफ़र बनने वाला है खूबसूरत, इस तरह से कि आप हमारी अच्छी अच्छी सुरीली सुरीली आवाज़ों को ट्यून करके अपने इस सफ़र को खूबसूरत बना सकते हैं। सो जी बताते चलते हो कि इस तरह से आप हमें ट्यून कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आप हमें ट्यून करें, सो उसके लिए फजा डैप के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, और इस तरह से आपका और मेरा साथ यूं ही बरकरार रहेगा और आपको अच्छी अच्छी सी सुरीली सुरीली सी आवाज़ें सुनने को मिलती रहेंगी। सो वेल लिसनर्स, अगर पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन के करीब या फिर अभी भी हैं रास्ते में, तो इस सफ़र को बनाइए और भी ज़्यादा खूबसूरत। और हाँ, याद रखिएगा कि जब कभी भी आप ड्राइव कर रहे हों, सो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी ड्राइविंग, आपकी फ्रंट सीट, और आपका पूरा फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए, रोड की जानिब, क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लोग बहुत अंधाधुंध गाड़ी चला रहे होते हैं। जेन ज़ी ने ये एक न्यू ट्रेंड सेट कर दिया है, द सो कॉल्ड रैश ड्राइविंग। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जस्ट फॉर द स्टंट, जस्ट फॉर द एक्शन, इस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, अपनी ज़िंदगी को हाथ में ले लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरा अमल है और बहुत ही बुरी बात है। सो ये लिसनर्स, आपने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना, आपने पूरा फोकस रखना है ड्राइविंग पे, ताकि आप आराम से इत्मीनान से अपनी मंजिल तक पहुंच सके, क्योंकि याद रखिएगा आपकी कोई भी छोटी सी गलती बन सकती है आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा मोटिव, सो आपने वो बिल्कुल भी नहीं करना, सारा ध्यान अपनी ड्राइविंग पे रखना है। बी सेफ, बी केयरफुल। सो वेल लिसनर्स, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, वहीं मैंने अक्सर औकात ये भी सुना है कि वेनसडे के आते ही लोग इस चीज़ के भी इंतज़ार में लग जाते हैं कि चलो अब आधा हफ्ता तो गुजर चुका है, बस अब दो ही दिन बाकी हैं, सो इन दो ही तीन दिनों में हमारा वीकेंड दोबारा से आने वाला है। एंड देन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वेनसडे को प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा इस वीकेंड हम क्या करेंगे, कहाँ जाएँगे, कहाँ से नहीं जाएँगे। वेल अभी मेरी अगर आपको मैं बताऊं, सो छोटे मोटे प्लान्स बनाते रहना चाहिए, जिस तरह कि हमने परसों डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि मैंने सोचा है कि मैं अपने इस स्पेशल डे को मज़ीद स्पेशल बनाऊंगी विद अपनी फ्रेंड्स। सो कल हमने इतनी बातें की कि मैं भूल ही गई कि मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरह से मैंने अपनी बर्थडे को स्पेंड किया और किस तरह से ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बन गया। सो वेल, यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया था कि हम साथ में कहीं जाकर लंच करेंगे। सो हम एक रेस्टोरेंट के मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन
ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہی زیادہ ہائی تھی اس ریسٹورینٹ سے, کیونکہ آپ سبھی کو تو معلوم ہے کہ گرلیز کہیں بھی جاتی ہیں, کوئی بھی کام کرتی ہیں, سو فرسٹ آف آل وہ پلاننگ کرتی ہیں, پلاننگ کرنے کے بعد دین وہ مینیو ڈیسائڈ کرتی ہیں, مینیو کارڈ چیک کرتی ہیں. سو کچھ اسی طرح سے ہم نے بھی مینیو چیک کیا, سارا کچھ اپنے مائنڈ میں فائنلائز کر لیا تھا کہ اچھا آج ہم اس اسپاٹ پر جائیں گے, یہ کھانا آرڈر کریں گے, ایسے کھائیں گے یا جو بھی ہے وہ سب. Guess what? وہاں جا کے کیا ہوا, جو مین کورس ہم سب نے ڈیسائڈ کیا ہوا تھا انفارچونیٹلی ان کے مینیو میں نہیں اویلیبل تھا, سو جس کے چلتے تھوڑا تو فرسٹ ریگریٹ ہوا, لیکن ہم نے سوچا کہ کوئی بات نہیں, سم ٹائمس چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہم نے پلان کی ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن تو چلتا رہتا ہے. سو پھر آگے جا کے ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنا مینیو چینج کر لیا. ویل اس کے علاوہ باقی وہ دن بہت اچھا تھا, بہت زیادہ مزہ آیا, کیونکہ اگر بات ہو گرلیز کی, گرلیز میٹ اپ کی, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرلیز کی دی فیوریٹ تھنگ ہوتی ہے کہ بہت ساری پکچرز لینا, سو اسی طرح سے میں نے بھی بہت ساری پکچرز لی, ہم نے بہت سارا کھانا کھایا, گوسپس کی, اور ایک اچھا سا میموریبل ڈے اسپینڈ کرنے کے بعد شام کو گھر واپس آ گئے. سو ویل اب واپسی پہ جو ہمارے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں, بہت ہی فنی انسیڈنٹ تھا, لیکن کہا جاتا ہے کہ ایسے اچھے اچھے دنوں میں کچھ نہ کچھ پھر اس طرح کا اسٹوپڈ تو ہو ہی جاتا ہے, سو وہ انسیڈنٹ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. لیکن میں فی الحال سوچ رہی ہوں کہ ایک گانا شو میں شامل کر دیا جائے, سو سنتے ہیں یہ اچھا سا انرجیٹک سا ٹریک. سو اس ٹریک کے اس پر آپ سے ہوتی ہے ملاقات, اور پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسی گوسپ کو.

लिसनर्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी बीच में, हमारे एक दो लिसनर्स ने ये सॉन्ग रिकमेंड किया हमें. सो आपको पता है कि लिसनर्स की रिकमेंडेशंस को हम ज़रूर फुलफिल करते हैं. सो डैट्स वाई मैंने ये गाने प्ले कर दिए. सो कैसे लगे आपको ये साउंड ट्रैक? और अगर आपको ये साउंड ट्रैक अच्छे लगे तो आप इस तरह के मज़ीद मज़े मज़े के और अच्छे से ट्रैक्स हमें रिकमेंड कर सकते हैं. सो वेल लिसनर्स, मैं आपको बता रही थी अपनी बर्थडे स्टोरी. सो द बर्थडे स्टोरी का एंड ये हुआ कि लास्ट में हमसे एक छोटा सा मैस हो गया, बट कोई नहीं, इट्स ओके, क्योंकि छोटे मोटे मैस तो फिर होते रहते हैं. लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ के मैंने अपना बहुत ही खास स्पेशल डे अपने उन दोस्तों के साथ स्पेंड किया जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिनके साथ मेरी कोर मेमोरीज हैं, और हमने मज़ीद अच्छी अच्छी नई मेमोरीज बनाई. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमें इस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप्स प्लान करते रहना चाहिए, क्योंकि यही तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को अच्छा फील करवाती हैं और बहुत मज़ा आता है.

लिसनर्स, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि क्या आज आप में से भी है किसी का जन्मदिन? सो अगर आप में से है किसी का बर्थडे टुडे, सो आप मुझे बता सकते हैं, डू लेट मी नो 1157100971 इस नंबर के थ्रू. सो हम आपको थ्रू द होल शो आपको विश करेंगे, साथ ही साथ आपको भी मैं एक अच्छी सी टिप दूंगी कि किस तरह आप अपने इस बर्थडे को मज़ीद खूबसूरत और मेमोरेबल बना सकते हो.

अब वक्त हो गया है शो में शो के अगले सेगमेंट को स्टार्ट करने का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा शो का अगला सेगमेंट होता है थोड़ा सा मोटिवेशन से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं दीगर रोज़मर्रा ज़िंदगी की, गॉसिप्स की। मैं आपको अपनी लाइफ अपडेट्स देती हूँ और साथ ही साथ आपकी लाइफ अपडेट्स लेती हूँ। तो कुछ इसी तरह से सेकेंड सेगमेंट में हम बात करते हैं थोड़ी सी मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की। सो आज भी मैं आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आई हूँ कुछ मोटिवेशनल कोट्स, ऐसे कोट्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल देंगे बल्कि आपका दिन भी अच्छा पॉजिटिव बना देंगे। सो आपके साथ शेयर करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट मोटिवेशनल कोट। हमारा आज का फर्स्ट मोटिवेशनल कोट सेज, यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल आर टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। सो सिंपली हमारा आज का फर्स्ट कोट कितना खूबसूरत, कितना शानदार है, क्योंकि हमारा ये कोट ये कहता है कि आप कभी भी बूढ़े नहीं होते इस चीज़ को लेकर कि आप नया गोल नहीं सोच सकते या फिर आप एक नया ड्रीम नहीं देख सकते। ये तमाम तो चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। उम्र के किसी भी हिस्से में आप हो, कुछ भी क्यों ना करते हो, कहीं से भी बिलोंग क्यों ना करते हो, आप अपने गोल्स का तयन खुद कर सकते हैं। आप ना सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस टाइम पीरियड में क्या चाहिए, बल्कि आने वाले अगले टाइम पीरियड के भी हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 97 2ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपकी पसंदीदा होस्ट और दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारे गॉसिप्स के साथ हम हाजिर हैं। सो वेल लिसनर्स, जैसा कि है आपको और मुझे गुफ्तगू करते करते एक घंटा हो चुका है कंप्लीट। सो अब आपको और मुझे साथ में रह गया है एक घंटा। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस एक घंटे के सफ़र को बनाएं और भी ज़्यादा खूबसूरत, बहुत सी ऐसी बातें करें जो आप सुनना चाहते हैं और शो में कुछ ऐसा शामिल करें जो आप सुनना पसंद करते हैं। सो साथ साथ आप हमें अपडेट करते रहिएगा कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं या हम शो में किस चीज़ के हवाले से करें गपशप।

वेल लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले मोटिवेशनल कोट की जानिब। सो आज का जो हमारा सेकंड मोटिवेशनल कोट है वो कुछ यूं है, यानी कि हमारा आज का सेकंड मोटिवेशनल कोट कुछ ऐसे कहता है,

our second quote says, life has no remote, get up and change it to yourself. यानी कि ज़िंदगी का कोई भी रिमोट नहीं होता, कोई कंट्रोल बटन नहीं होता. हम ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चला सकते हैं, घुमा सकते हैं, जहां हम उसको लेकर जाना चाहें. यानी कि हमारा सेकंड कोट ये कहता है कि आपके हाथ में है, आपके इख्तियार में है कि आप क्या चाहते हैं, ज़िंदगी किस तरह से हो, ज़िंदगी किस तरह से अच्छी बनाई जा सकती है. यानी कि आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी एक अच्छे साइड पर जा रही है या एक बुरे साइड पर जा रही है.

जो कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की लाइफ देख कर ऐसा सोचते हैं कि वाओ इसके पास तो ये चीज़ है, इसके पास वो चीज़ है, लेकिन मेरी लाइफ उस तरह से नहीं है, मेरी ज़िंदगी उस तरह से नहीं है. सो हर एक ज़िंदगी, हर एक बंदे की अपनी डिफरेंट लाइफ होती है, डिफरेंट सिनेरियो होते हैं. सो आप अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं. तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी का पैटर्न किस तरह से चूज़ करते हैं. इट्स टोटली अप टू यू.

सो वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का सेकंड मोटिवेशनल कोट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ ही हमारा ये मोटिवेशनल सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सो डू लेट मी नो कि आपका आज के कोट के हवाले से है क्या कहना, या फिर इससे आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिविटी मरतब हुई है या नहीं हुई, या फिर अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर कुछ कन्फ्यूज़ हैं या फिर कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ूकात इंसान को किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो इंसान को अच्छा गाइड करे और उसे चीज़ें समझने में मदद दे।

तो वेल लिसनर्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेकंड सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं कुछ ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड, कुछ स्किन केयर से रिलेटेड। सो आज के लिए मैं आप सबके लिए एक DIY मास्क लेकर आई हूँ। मास्क बहुत ही अच्छा और आपकी स्किन को इंस्टेंटली ग्लो एंड अप बना देगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले हमारे एक लिसनर की फरमाइश भी है कि एक गाना शो में शामिल किया जाए, तो आइए ज़रा ये गाना शो में शामिल करते हैं और ट्रैक के उस पर फिर हम स्टार्ट करते हैं ब्यूटी टिप्स।

इस वक्त वक्त हुआ है डीवा डायलॉग में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से हमारे संग जुड़े रहें, बंधे रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए आप ये खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं दीवा डायलॉग जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे।

सो वेल लिसनर्स, जैसे कि हमने मोटिवेशन की भी बात कर ली, अब सब बात करते हैं थोड़ी ब्यूटी से रिलेटेड. सो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रो टिप्स जिनसे आप इस कदर गर्मी में अपना मेकअप रिफ्रेश कर सकते हैं. यानी कि यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ मेकअप ऑन योर फेस, या फिर आपको कोई भी हैवी किस्म के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं. ऑल यू हैव टू नीड इज सम फ्यू गुड प्रोडक्ट्स. सो जैसे कि आपको पता है कि आजकल मौसम किस कदर तब्दील हो रहा है, और इस बदलते हुए मौसम के साथ साथ हमारी जो स्किन है उसका जो पैटर्न है, वेरिएशन है, वो भी काफ़ी हद तक बदलते चले जाते हैं. सो इस तमाम तर तब्दीली की वजह से होता ये है कि स्किन काफ़ी हद तक डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और फिर स्किन की जो तब्दीली है उसकी वजह से हमें बहुत डल लगने लगती है. सो बहुत सारा स्किन केयर तो हम कर सकते हैं अपनी स्किन को अंदर से अच्छा करने के लिए, लेकिन आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जो बाहर से भी स्किन को अच्छा कर सकती है. सो जैसे कि जब कभी आपको ऐसा फील होने लगे कि अब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, या फिर उस तरह से आप रिफ्रेश नहीं दिख रहे, सो देर आर फ्यू इन्ग्रीडियंट जिन्हें आप अपनी डेली बेस की रूटीन में ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली ग्लो अप कर देंगी और आपको अच्छा और फ्रेश फील कराएंगी. सो सबसे पहले, इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन एंड यू इफ सॉरी इवन इफ यू हैव अ ऑयली स्किन और इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, तो ये दोनों ही स्किन टोन्स पर बहुत अच्छे से वर्क करता है. आपको यूज़ करना है रोज़मेरी यूज़ करना है, या फिर सिंपल रोज़ वाटर. आप इसे अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकती हैं, नाइट स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकती हैं. सो आप जब डेली बेसिस पर सुबह उठकर अपने फेस को फ्रेश करके स्प्रे करेंगी, तभी आपकी स्किन खूबसूरत और ग्लोइंग दिखेगी.

सो साथ ही साथ अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो आप एक चीज़ का एडिशन कर सकते हैं, वो ये चीज़ है कि आप डेली बेसिस पर एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में दो तरह के एलोवेरा जेल मिलते हैं, एक होता है नेचुरल एलोवेरा जेल और दूसरी जानब होता है आर्टिफिशियल एलोवेरा जेल। आर्टिफिशियल तो नहीं, मीन्स ये कि ऐसा एलोवेरा जेल जो कि आपको सुपरमार्केट से मिलता है, जो कि पैक हुआ हुआ होता है या फिर पैकेजिंग के साथ होता है। सो आई प्रेफर एंड आई सजेस्ट कि आपको यूज़ करना चाहिए नेचुरल एलोवेरा जेल, जिसे आपने फ्रेशली कट किया हो और फ्रेशली उसका जेल निकाला हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें कोई भी हार्श पार्टिकल्स नहीं होते, कोई केमिकल्स नहीं होते और ये आपकी स्किन को अच्छी तरह डीपली क्लींस करता है।

सो ये तो होगी वो टिप्स जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती हैं। साथ ही साथ आपसे एक और टिप शेयर करती हूँ। सो इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन तो आपने डेली बेसिस में क्या करना है, हमेशा आपने एक फ्रेश बाथ लेना है। किस तरह से लेना है? आइस रबिंग। अब आइस रबिंग बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको इरिटेशन होती है या फिर उनकी स्किन ऐसे जली जली फील होती है। सो ऑनेस्टली हर एक चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। सो अगर आप डिफरेंट तरह से यूज़ कर रहे हैं या आप उसको ठीक तरीके से नहीं अप्लाई कर रहे तो दैट्स व्हाई दैट्स द रीज़न आपकी स्किन ऐसे जली जली लगती है।

सो वेल लिसनर्स, इस तरह से ब्यूटी टिप्स का सिलसिला तो चलता रहेगा, साथ ही साथ थोड़ी सी म्यूजिक मस्ती को भी शो में शामिल किया रखना चाहिए। तो ये एक ट्रैक प्ले करती चलती हूँ आप सभी के लिए, सुनकर बताइए कैसा लगा आपको ये ट्रैक, और फिर वापस से अपनी स्किन केयर जर्नी स्टार्ट करते हैं।

लिसनर्स, बात मैं ये कर रही थी, हम मेकअप की बात कर रहे थे, तो आई स्क्रबिंग जो नहीं है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है, आप इसको मॉर्निंग या फिर नाइट रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं. वेल, मैं प्रेफर करूँगी कि जैसे कि आजकल इतनी बिजी हमारी लाइफ चल रही है, डेली बेसिस पर वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो सुबह के वक्त इतना टाइम नहीं होता कि हमें जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी होना होता है, मुझे भी, आपको भी, हम सबको. सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्किन को अच्छा रखें, तो बेस्ट तो यही है कि आप रात में तमाम तरह की स्किन केयर को फॉलो किया करें. सो आप एलोवेरा अपने फेस पर आराम से रब करें, उसके बाद आइस रब कर सकते हैं, रोज वाटर से स्प्रे कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के मौसम में यू नीड अ गुड मॉइस्चराइजर. अब यहाँ बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि हमारी तो ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करना चाहिए. सो हनी, मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू हैव अ ऑयली एक्ने क्रोमिडोन स्किन, तो आपको चाहिए एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. लेकिन अगर आपकी है ड्राई स्किन, तो आप एक कोई भी ऑयली मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू एंड इट्स टोटली योर चॉइस.

सो इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेकअप टिप्स की. सो इस तरह के मौसम में आपको कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से कर देने चाहिए स्किप, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो सबसे पहले आपको यूज़ करना चाहिए एक बहुत ही अच्छा जेल बेस या फिर रनिंग कंसिस्टेंसी वाला सन ब्लॉक. आप कोई सा भी सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू. लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ के फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप. इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन तो आप कोई भी जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी है ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन तो आप कोई भी ऑयली सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. दोनों ही सूरतों में अगर आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन कभी भी डैमेज नहीं होगी, आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे और आपको कभी भी एक्ने नहीं होगी.

सो अब हम बात कर रहे थे कि कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हमें डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पर यूज़ करना चाहिए सनब्लॉक तो मस्ट है, मस्ट। इसके अलावा एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र के बाद मेकअप में आपको यूज़ करना चाहिए अ वेरी गुड ऑयल फ्री कंसीलर, ठीक है। अब यहाँ मैं ऑयल फ्री कंसीलर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो ऑयल फ्री कंसीलर्स होते हैं वो आपकी स्किन में जल्दी से अब्सॉर्ब नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, आपकी स्किन को फ्रेश रखते हैं और अच्छा बनाते हैं।

सो आप जरा बात कर लेते हैं एक अच्छा कंसीलर, साथ ही साथ आपको यूज़ करना चाहिए एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग सा टिंट, क्योंकि टिंट क्या करता है, फेस में थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट लेकर आता है, स्किन में निखार पैदा करता है और स्किन को बनाता है होप्सवेल। सो ज़्यादा कुछ आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी सारी होती है और बिल्कुल भी हम हैवी या केकी नहीं फील करना चाहते, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपकी स्किन में थोड़ी सी फिनिश दिखे, तो आप एक अच्छी कोई सी भी बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको रिकमेंड किए आपको आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग यूज़ करने चाहिए। वेल, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स वगैरह बताऊं या फिर आपको बताऊं कि किस ब्रांड के आपको यूज़ करने चाहिए, सो डू लेट मी नो 01157100971 इस नंबर के थ्रू। सो आई मेक श्योर कि मैं आपसे तमाम तरह प्रोडक्ट्स डिटेल में शेयर कर दूँगी। सो कल हम मेकअप या फिर स्किन के बारे में बात नहीं कर सके थे, तो आज मैंने सोचा था कि हम इस पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ ही डीवा डायलॉग का ये जो सफ़र हमने मैंने यानी और आपने शुरू किया था अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। सो आज का शो ख़त्म हुआ जा रहा है, जाते जाते एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, हमारे आज का जो फर्स्ट कोट है वो ये कहता है कि उम्र का कोई भी हिस्सा मुकर्रर नहीं होता कि आप अपना कोई गोल सोचें या फिर ड्रीम सोचें, आप किसी भी टाइम अपना कोई भी गोल या फिर ड्रीम सेट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली सेकेंड हमारा गोट ये कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ को करने का अहद करते हैं तो जस्ट फोकस करें, लाइफ का कोई भी रिमोट बटन नहीं होता, ये आप पर इन्हिसार करता है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चलते हैं। सो वेल लिसनर्स, इसके साथ ही ये शो का वक्त हुआ चलता है हितम, गपशप का सिलसिला तो आगे चल रहा था और बहुत मज़ा आया आप सबके साथ गपशप का, क्यों उम्मीद तो यही आपको भी अच्छा लगा होगा। वेल आज के शो के हवाले से आपका क्या फीडबैक है आप हमसे शेयर कर सकते हैं 01157100971 इस नंबर के थ्रू, और साथ ही साथ हमें बता सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और कल के शो में कौन सी रेसिपीज मैं शामिल करूं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो लिसनर्स, इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक ट्रैक प्ले करती चलती हूँ ताकि आप सुनते सुनते मुझे अलविदा करें।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स राउंड, जवाब आप सुन रहे हैं सरराज की सवर। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में कुछ चंद पैगाम, कुछ मैसेजेस शामिल करवाए गए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए।

सवाल इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा, इसके सुबह रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फॉर द 97.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात गए तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HG।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए स्लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। जी मैं हूँ आपकी आरजे दीवान, ओनली आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलूराज। खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर से तमाम सुनते हुए समातों को प्रोग्राम में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहेगा ठीक ठीक दो घंटे का। अभी वल जो है, अभी जो है ना, वो हमारा लास्ट सेगमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट इसको कहा जाता है, यानी कि ट्रैक्स का मैंने रखा होता है कि गाने वगैरह प्ले किए जाएं जो आपकी फरमाइशें होती हैं, उनको मैं प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। सो इसी के साथ साथ अभी मेरे पास एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद थी, सो मैंने सोचा कि उन्हें इसको प्ले कर लिया जाए। मज़े की बात जब मैं एक ट्रैक प्ले करवा देती हूँ ना जिस तरह के, तो फिर उस तरह की फरमाइशें भी आना शुरू होती हैं, और काफ़ी सारी फरमाइशें ऐसी आती हैं जो मेरी भी पसंद की होती हैं, यानी कि मेरी और आपकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। सवल आइए चलते हैं इस ट्रैक की जानिब। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।
1: आई लव यू बोले कितना टाइम हो गया यार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सो उसी के साथ साथ एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन बिजी के साथ साथ मेरे पास एक और फरमाइश मौजूद है, तो मैंने सोचा यूँ ना उसको भी प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए। अभी इसी तरह फरमाइश ही पूरी करते रहेंगे, फिर उसके पास जाएंगे। आपसे इजाज़त, लेकिन अभी तक के लिए साथ दीजिएगा, ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 एफएम को एंड ऐप को।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। अचानक से सीढ़ियों की आवाज कानों में पड़ी और मुझे समझ आई कि यार ये क्या हो रहा है। वल्लू जी के साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का साथ पसंद आया होगा और डेफिनेटली आना भी चाहिए। सो वल्लू जी के साथ साथ मेरी कोशिश यही रहती है कि ना सिर्फ आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाई जाए बल्कि ढेरों वो पैगामात, वो ख्वाहिशात, वो फरमाइशें प्रोग्राम में शामिल की जाएँ जिनके लिए मुझे मैसेजेस आते हैं। अभी मेरे ख्याल से लापता होने का टाइम भी आ पहुँचा है, तो मैंने उसी के साथ साथ फिर एक लापता ट्रैक भी शामिल कर दिया है। और बताइएगा कि आज के दिन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसके बारे में आपको कितनी समझ आई है, और उम्मीद ये भी करूँगी कि आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में उस इन्फॉर्मेशन को जो है अपने काम में भी लेकर आएंगे। कभी कभी जो है ना इंसान को वहाँ पर ऐसे लेक्चर्स देने पड़ जाते हैं जहाँ पर मतलब कोई उसको जानता भी ना हो सही से, और फिर वहाँ पर जो है ना पूछा जाता है कि आपको ये बात किसने बताई थी, तो फिर उस बेगानी महफिल में जब उसका जिक्र किया जाता है ना उस इंसान का जिसने आपको ये बात समझाई हो या बताई हो, तो बड़ी अच्छी बात होती है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि लापता होने का टाइम आन पहुंचा है, तो टाइम बहुत सख्त होता है और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना टाइम आपके साथ रहती हूँ उसको अच्छे से गुजारूँ, आपकी फरमाइशों को भी पूरा करूँ, आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाऊँ, क्योंकि कि वो गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के चलती है, इट्स मीन के वक्त से चलती है ये गाड़ी। और फिर वही बात आ गई, मुझे आपसे गपशप करने का मजा आने लग जाता है, या तो टाइम ख़त्म हो जाता है या फिर कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जाता है। बट इसमें कमर्शियल ब्रेक भी आएगी लेकिन उसके बाद फिर हम आपको मिलेंगे नहीं, बाकी कमर्शियल ब्रेक्स के बाद हम आपको मिलते हैं लेकिन इस बार हम आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन हमारी बाकी ट्रांसमिशन जो है ना वो आपके साथ जुड़ी रहेगी। आप बाकी जो है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन अगर कोई शामिल करवाना चाहें या कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, बस आपने करना ही है जिन नए लोगों ने आज अभी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सो वल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। वाला आप सिर्फ मैसेज के थ्रू प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते, जाते जाते बता जाती हूँ कि आप कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए नंबर आपको गिन आउट करवा देते हैं 01157100971।

या फिर आप भी अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जगाना चाहते हैं तो आप हमारी मार्केटिंग टीम से रابطہ कर सकते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं हमारे स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

दोस्तों, दुनिया का हर खोया हुआ सरमाया दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन जो वक्त गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आता। कामयाब लोग और आम लोगों में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि कामयाब लोग वक्त को खर्च नहीं करते बल्कि सरमायाकारी करते हैं। अगर आज हम अपने सिर्फ एक घंटे को भी बेहतर बना लें तो चंद साल बाद हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जा सकती है। इसलिए कहा जाता है, वक्त को ज़ाय मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का ही एक दूसरा नाम है। सुनिएगा एक सॉन्ग, सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

अब ज़रा अपने नौजवान दोस्तों से भी बात करते हैं। मेरे अजीज़ नौजवानों, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ख्वाब ज़रूर देखिए, लेकिन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी कीजिए। किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो अपने हिस्से की पूरी कोशिश दयानतदारी के साथ करते हैं। नाकामी से हरगिज़ मत घबराइए, क्योंकि नाकामी दरअसल कामयाबी का पहला सबक होती है। जो लोग हर गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होते हैं, तारीख उन्हें ही याद रखती है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, दयानत, मोहब्बत, एहतराम और खिदमत खल्क को जगह देंगे। किसी के दिल से दिल नहीं दुखाएंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करेंगे और जहाँ भी होंगे रोशनी बांटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक अच्छा इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं संवारता बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भी बेहतर बना देता है। सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM।

0: आफ्टरनून मिक्स में वक्त हुए है एक खूबसूरत से सॉन्ग का, सुनते कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।
1: मैं तो चलूँ हाँ।

एक और खूबसूरत नगमा आप सुन रहे हैं रेडियो फजा एफएम 97.1 पर। एक बार फिर मैं आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा हैदर आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ के भी अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर नई सुबह इंसान को एक नया मौका देती है। कोई ख्वाब अधूरा रह गया हो या किसी बात पर दिल टूट गया हो तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कहानी ख़त्म हो गई है। अक्सर हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें अपनी नेमतें दिखाई ही नहीं देती। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप सेहतमंद हैं, अपने पैरों पर चल सकते हैं, अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, अपने कानों से अपने प्यारों की आवाज़ सुन सकते हैं, तो यकीन जानिए आप दुनिया के लाखों लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हैं। इंसान की फितरत है जो उसके पास है उसकी कदर कम करता है और जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। हालाँकि सुकून ख्वाहिशों के पूरा होने से नहीं बल्कि शुक्र अदा करने से मिलता है। हमें दूसरों की कामयाबी देखकर हसद करने के बजाय अपनी मेहनत पे तवज्जो देनी चाहिए। हर इंसान का वक्त अलग होता है, हर शख्स का इम्तिहान अलग होता है और हर एक का रिस्क भी अल्लाह ताला ने अलग रखा है। इसलिए अपने मुवाजना दूसरों से करने के बजाय कल के अपने आप से कीजिए। अगर आज आप कल से बेहतर इंसान हैं तो यकीन जानिए आप तरक्की करें। और एक बात जो शायद हम सबको याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बाज़ औक़ात एक जुमला बरसों के ताल्लुकात ख़त्म कर देता है जबकि एक अच्छा जुमला अजनबी को भी अपना बना देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी ज़बान से हमेशा खैर की बात निकले, हौसला निकले, मोहब्बत निकले और दुआ निकले। सामने ज़िंदगी के मसरूफियात में अपने रब से ताल्लुक़ को कमज़ोर ना होने दीजिए। चंद लम्हे दुआ के लिए, चंद लम्हे कुरान करीम की तिलावत के लिए और चंद लम्हे अपने आमाल का जायज़ा लेने के लिए ज़रूर निकालिए। यही वो लम्हे हैं जो दिल को सुकून देते हैं और इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इंशाल्लाह गुफ्तगू का यह खूबसूरत सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले वक्त हो रहा है एक और खूबसूरत नगमे का। आप कहीं मत जाइएगा, रेडियो फजा एफएम 97 सुनते रहिए। मैं हूँ आपका मेज़बान और वक्फे के बाद फिर हाजिर होऊंगा कुछ और खूबसूरत बातों, मुस्बत ख्यालात और दिलों को छू लेने वाली गुफ्तगू के साथ। सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गए ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 97 2 ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

क्या ही खूबसूरत शेर है कि उनके अंदाज़े करम और उन पे वो आना दिल का। ज़िंदगी का हर दिन अल्लाह ताला की एक नेमत है, कभी हम मसरूफियात में इतने खो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं रहता कि हमारे पास कितनी नेमतें मौजूद हैं। इसलिए आज के दिन की शुरुआत या इख्तिताम जहाँ भी आप हमें सुन रहे हैं, एक लम्हे के लिए रुक कर अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अदा कीजिए, क्योंकि शुक्रगुजार दिल हमेशा सुकून पाता है। और जी हाँ, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा, आपकी पसंदीदा मौसीकी भी, खूबसूरत पैगामात भी, मालूमाती गुफ्तगू भी, और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके दिल को छू जाएं। अगर आप किसी अपने के नाम की खूबसूरत पैगाम देना चाहते हैं, सालगिरह की मुबारकबाद देनी हो, किसी दोस्त को सलाम कहना हो, या किसी गाने की फरमाइश करनी हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी अपना पैगाम भेजिए, हो सकता है अगला पैगाम आप ही कहो। जो इंसान दूसरों के लिए आसानी का सबब बनता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पैगाम भेजने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 0115710971। पैगाम लिखते वक्त अपना नाम लिखिए, स्पेस देके अपना शहर का नाम लिखिए, और फिर अपना पैगाम लिखिए और सेंड कर दीजिए। सुनते रहिए फजा 97.1 FM। यहाँ एक वक्त हुआ है, खूबसूरत से सॉन्ग का सुनते रहिए।

याद रखें, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सीखने से नहीं घबराते। कामयाबी के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। हर चीज की कीमत होती है और इंसान की कीमत उसकी खूबियां हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। रोशनी की उम्मीद रखें, मगर उम्मीदों पर जिंदगी मत गुजारें। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो अपने आप को छोटा काम करने पे राजी कर ले।

समझदार शख्स सुनने में और ज़्यादा बोलने में कम और सोचते में सबसे आगे होता है। ज़िंदगी के जिस मकाम पर हों उसे तस्लीम कर लो, ये भी तस्लीम करें कि यहाँ आपने हमेशा नहीं रहना।

हम अपने बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद और दौलत छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अच्छी तालीम और अच्छे अखलाक ना दे सके तो बाकी सब चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। इसलिए अपने बच्चों को वक्त दें, उनकी बात सुने, उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वो सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने के लिए तालीम हासिल करें। रिसेंटली कुछ बच्चों का अभी रिजल्ट आया होगा, कुछ कामयाब हुए होंगे और कुछ आर्जी तौर पर नाकाम। इसलिए अपने बच्चों की हौसला अफजाई किए बजाय इसके कि उन्हें डांटें, उन पर सख्ती करें। मेहनत करने की तरगीब दें क्योंकि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले तो पहले खुद सच बोलें। अगर आप चाहते हैं कि किताबें पढ़े तो कभी भी उसे अपने हाथ में किताब नजर आनी चाहिए। बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे इर्द गिर्द से ज्यादा सीखते हैं, हमारे किरदार से। तालीम सिर्फ रोजगार हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता। आइए हद करें और अपने बच्चों को सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि बाकिरदार, बाखलाक और जिम्मेदार इंसान बनाने की भी कोशिश करेंगे। आजकल एक बात अक्सर सुनने को मिलती कि बच्चे पहले जैसे नहीं, लेकिन हमने खुद से कभी सवाल किया कि क्या हम पहले जैसे वालिदैन और असातिज़ा रहे हैं? बच्चा खाली जहन के साथ पैदा होता है, उसकी पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, दूसरा स्कूल उसका घर और तीसरी दरसगाह उसका तालीमी इदारा। अगर तीनों मजबूत हों तो बच्चा भी मजबूत किरदार का मालिक बनता है। किसी दाना ने कहा था कि बच्चे आपकी नसीहत कम और आपकी आदतें ज्यादा सीखते हैं।

यहाँ वक्त एक खूबसूरत से सॉन्ग का सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि सॉन्ग का टाइटल है तेरा वादा अगर वफा होगा, सुनिएगा और सर धुनिएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715222

वेलकम बैक। सुबह दोपहर शाम या रात आप जब भी हमें सुन रहे हैं रेडियो फजा एफएम 97.1 की जानिब से मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। आप सुन रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जहां बहाते भी हैं और मालूमात भी, हौसला भी और मुस्कुराहट भी। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपकी परेशानियां आसान अता फरमाए और आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है लेकिन दिल में बेशुमार फिक्रें छुपी होती हैं और कोई खामोश रहकर भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इसलिए याद रखें कि अल्फाज का इंतखाब बहुत आम होता है। आपकी एक अच्छी बात किसी का दिन खूबसूरत बना सकती है, किसी का हौसला बढ़ा सकती है और किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे सकती है। इसलिए जहाँ भी जाए मोहब्बत बांटें, इज्जत दें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत सरमाया अच्छा अखलाक है। एक और खूबसूरत बात कि हम अक्सर अपनी खुशियों को बड़ी कामयाबियों से जोड़ देते हैं, हालांकि हकीकी खुशी छोटी छोटी नेमतों में भी होती है। वालदैन की दुआ, दोस्तों की मुखलिसी, सेहत, सुकून की नींद और दो वक्त की रोटी, ये सब ऐसी नेमतें हैं जिनकी कदर हमें हमेशा करना चाहिए। आज अगर आपके पास कुछ लम्हे फारिग हैं तो अपने वालदैन के साथ बैठें, किसी अजीज को फ़ोन करें, किसी नाराज दोस्त को मना लें या किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। यकीन मानिए, ये एहसास दिल को ऐसा सुकून देता है जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। अब वक्त खूबसूरत से गीत का, आप गाने से लुत्फानंदोज़ हों। हम मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो फजा एफएम 97.1 एफएम।

एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों। कहते हैं कि कामयाब इंसान वो नहीं जिसकी ज़िंदगी में मसाइल ना हो, बल्कि कामयाब वो है जो हर मुश्किल के बावजूद हिम्मत ना हारे। अगर आज हालात आपके मुताबिक नहीं है तो मायूस ना हो, मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है और अल्लाह ताला जब चाहे हालात भी बदल देते हैं। बस मेहनत जारी रखें, दुआ का दामन ना छोड़ें और अपने रब पे कामिल भरोसा रखें। इसी मुस्बत सोच के साथ हमें अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर आपका कोई पैगाम, फरमाइश या राय हो तो हमें ज़रूर भेजिए, हमें आपका इंतज़ार रहेगा।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक.
6: फजान 97.1 एफएम.
7: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
8: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए.
9: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया.
8: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन.
9: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो.
8: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी. अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक. एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL. अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए. जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम. बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999. एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन. हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस. Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
11: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
12: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
11: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
12: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
11: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
12: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
11: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS.
12: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट.
11: टेस्ट भी, वाइब भी.
13: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
14: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
13: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
14: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
13: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
14: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
15: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
16: You are listening 97.1 FM.

वो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू राज ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक.
6: फजान 97.1 एफएम.

0: hot.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays
4: foot tapping music.
5: Huzza 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793 2.
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8, 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: ओखाना कराई के खुशबू गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816, एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड, लेंटन नॉटिंगम, NG72ET,
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97।
2: You are listening 97.1 FM.

0: मेरी हर ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2.
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यार। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा, रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ।
7: You are listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

0: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
9: hayatweddings.co.uk।
10: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.